रात नहीं सुता होना, क्योंकि राजे नूं रोग है। जब तक मैं मुठ्ठी चापी ना करा, सेवा ना करा, उन्हूं नींदर नहीं पैंदी। हो सकता है गुस्से विच कोई सदा देवे, जिस वेले नेड़े आया ना ते राजा ऐन अरोग बैठा होया, इतनी खुशी ते प्रसन्नता विच कहिंदे ने गलों को आए खोल पहनाई, अपनी राजियां वाली पोशाक उतार के सैन नू पवा के तख्त ते बिठा दिता। सैन, तू अज तो राजा ते मैं तेरा नौकर। हुण सैन हैरान है, देखो निमाणिया नू मान किवें मिलदा है, पर मिलिया बंदगी दे सदके। एक रात कीर्तन बैठती सदके, ते कहिंदे ने जिस वेले सैन ने इस गल नू वेख्या ते कहन लगा, राजन की गल है, तू ऐसा क्यों कर रही है, अपनी पोशाक मैनू पहना के ते तख्ते बिठा रहे हैं, की गल है। कहन लगा, अज रात सेवा तो खुश होके ए मैं सब कुछ तेनू दे रहा, क्योंकि जिहड़ा मेरा रोग सी ओह निवृत्त हो गया। ते सैन कहिंदा, राजन अज रात ते मैं नौकरी ते नहीं आया, तेरी ड्यूटी करनी नहीं आया। कहन लगा, नहीं मेरियां अखां धोखा नहीं खा सकदियां, मैं तेनू आप आउंदियां वेख्या, पर अज रात दी सेवा नाल मेरा रोग दूर हो गया। हुण सैन कहिंदा, वाह काल पुरख तू कैसा है, बस इतना वेख्या कि मैं तेरी ड्यूटी दे रहा ते तू मेरा रूप लैके मेरी ड्यूटी देन आ गए, कैसी बात है। किते असी भी परमात्मा नाल जुड़ के परमात्मा की ड्यूटी निभाइए, वो मालक भी साडियां ड्यूटियां देवेगा। बिल्कुल ऐसा हुंदा है। कहिंदे ने अज इस गल नूं वेख के हैरान होया, दूरो राणे सद के गलो को आए खोल पहनाई, बस कीता हो तुद अद बोले राधा सुने लुकाई, प्रगट पई भगत वड़ियाई। ये वड़ियाई भगत नूं मिली है। साध संगत, सतगुरु जी ने बाणी विच उपदेश दिता है, सहन नाई बुतकारिया ओए कर कर सुनिया, हिरदे बसिया पार ब्रह्म भगता में गणिया। अंत भी सतगुरु जी कहिंदे ने ए

उपमा महा कलगी दरबादशाह केंद्र ने अकाल पुरख तू राजा दा राजा तू सूरजा दा सूरज तू देवतियां दा देवता तेरी उपमा बड़ी महान है।

ऐसी उडारी मारी कि मानो दुनिया पलट गई। एक बड़ा ऊंचा पहाड़ है, चार चफेरे बर्फ ही बर्फ नजर आ रही। एक छोटा जिया पानी दा तल है, कुछ महात्मा बैठे ने कीर्तन शुरू होया। एक बड़ा ही तेजस्वी पुरुष इन्हां सारिया दे विचकार बैठा है। कीर्तन ऐसा शुरू होया, उस कीर्तन दे विच सारे गवाच गए ने। सुरत ने उडारी मारी एक अनुभव नगर जा पहुंचे।

जिदे बड़े बड़े उच्चे मकान ने, बड़े बड़े वटे महल बने हुए ने, पर ओ महल इट्टां गारे दे ने, हीरे जवाहरातां दे नालों भी सूक्ष्म शहद बने हुए ने। उस शहर नूं बेगम पुरा भी कहंदे ने, जिथे गम कोई नहीं। तेजस्वी पुरश दे नाल असी भी इस शहर के अंदर दाखिल होए हां। इस शहर बारे धन गुरु अर्जुन साहब अपने

0: प्रभु हमको समझायो, इम कह के लोक पठायो।
1: मन नहीं मन रहा पर अकाल पुरख नहीं समझाया। ता दुष्ट दमन जी कहंदे नहीं संसार विच अंधेरा बड़ा अज्ञान दा। बचन कीता ऐ प्यारे मैं तेरे विच चानना बन के रहांगा, जिथे तू जाएगा अंधेरा दूर भज जाएगा। ते नाले मैं तेनू अपना पुत्र बना के संसार विच भेज रहे हैं।

हेमकुंड पर्वत जिथे अज हजारां संगतां दर्शन करन वास्ते जांदियां ने, सचमुच मन सच्चा प्यार सच्चा ते कलगीधर पातशाह फिर आप लैण वास्ते अगों आंदा है, अपनी गल दे नाल लगा लैंदा है, अपने चरणां दे विच जगह दे दिंदा है। आओ भाई उस दुष्ट दमन दे तपो स्थान दे आपां भी दर्शन करिए, कीर्तन करिए, सुनिए। हो सकता है कीर्तन सुनदे हैं साड़ी भी सुरत उडारी मारे ते उस शहर दे विच सानू भी जगह मिल जावे, साड़ा आया सफला हो जावे।

ब्रह्म ज्ञानी सद जीवे नहीं मरता, नाम रहो सब। माता जी चले गए, पिताजी चले गए, बाबा ही रहते। शस्त्र विद्या सीखण लग पे, गुरबाणी दी विद्या सीखण लग पे, वेले बह के मैं रोटियां नहीं पाड़नी है। है। होर भी कई कुछ, अज आप जी दे नाल बाबा जी आप ही ओ सीन सांझा कराण जिथे जाना चाहनी हां। एक दिन बाबा दीप सिंह जी संगत दे जूठे कौले मांजदे पे सी, अज ये गुण लै जाना बाबा दीप सिंह होने ते कौले मांजन। बाबा ही कौले मांजदे पे, कोला हाथ चे नाल नाल सिमरन नाल नाल कोला, नाल नाल सिमरन नाल नाल कोला। इन्नी क लिव लग के कोला मांजदे पे के गुरु गोबिंद सिंह जी नू 10 मिंट हो गए कोल खड़िया पिछे, ते बाबा जी का उधर लिव। जदों सिंह नाल हुंदे सी गुरु गोबिंद सिंह बाबा जी, जदों ध्यान वेखिया साहब खड़े ने, ते कहंदे कौला हाथ विच ही है, सवा नाल लिबड़िया, हाथ भी लिबड़े ने सवा दे, ते डंडौत करके मालक नूं कहंदे जी भुल हो गई आप जी खड़े, ते मेरा ध्यान ही नहीं कि आप कोल खड़े। बख्श लेना गुरु गोबिंद सिंह महाराज दसना ते दूजे सिंघां नूं होणा, कहंदे दीप सिंह कोले मांजदा पे, बाबा जी तुहाडी कृपा ना, गुरु गोबिंद सिंह महाराज तुहाडी कृपा ना, ते तन गुरु गोबिंद सिंह

आखन लगे सानू ते दस के नहीं गई। अगे भी जांदी है उन्हां आखिया जी सानू ते कोई भी नहीं पता, असी ते कदी भी राणी नूं जांदिया नहीं देखिया। मन विच भरम हो गया राणी किथे जांदी है मैनू दसण तों बगैर।

तेरी बाणी विच बड़िया रहमता ने। साध संगत मिल गाम दे राती जाए सुने गुरबाणी। अतारा राणी दे उदाहरण दे के भाई गुरुदास जी सानू समझाउण दा जतन कर रहे ने। कीर्तन विच बैठेगा ना दुनिया दे दुखां कलेशां तों सतगुरु तैनू आप बचा लवेगा।

0: भज गोविंद भूल मत जा।
1: इतने कितनी समाप्ति कर दें, कीर्तन कर दें, बाणी पढ़ दें, आप जी आनंद शेवकंद को बेंत भुला हुई होंगी, आप जी बख्शन योग हो भुला चुका लिखे मां आई शंका बलो परम पूज सिंह साहब जी बलों बेंत माया शोध पेठ हाजिर है पातशाह जी जिन खजाने जमाए सुख जाने भरपूर कर रहे सत खालसा जी काज राश कर रहे हुक्म होया जी पंच मिनट का शब्द मन तो करता कि कीर्तन कर जाइए सवैये महल चौथे केजी के बिचों टेक है सच साज

0: चले हरी चले हरी यहाँ हरी वहाँ हरी गिरे हरी गुफे हरी छिते हरी नपे हरी जमी हरी जमा हरी मक्की हरी मका हरी हरी हरी हरी हरी
1: तू ही सदा तू ही
0: जी सदा।

0: के साधु के चरण।
1: भगवान राम
2: प्रेरणी की चुग्गी पहुंचे भगवान, जिना रहा तू आयो ना रहा तू मैं सदके जाऊं। कुछ आदास विछाया पीलनी ने, त्रेता युग दे मालिक भगवान रामचंद्र जी बैठ गए। महाराज मैं गरीबनी ते बख्शिश कीती है ना, नहीं पीरनी तेरे प्यार तेरी जी पीरनी भुख लगी है। आखो श्रीवाल पीरनी डाडी भुख लगी कुछ खिला। रब नू बड़ी भुख लगी। बाबा जी कलेरां वाले बाबा जी, बाबा नंद सिंह जी महाराज प्राप्ति वाले महापुरुष, नाम जप के नाम दी प्राप्ति। नाम जपना होर चीज है, नाम दी प्राप्ति हो। जेड़े परमार्थ दे राह ते तुरे न भाई उन्हां दे भी चरण चुमी है। तुरे तां हन जेड़ा तुरिया है ओही पहुंचण दी आस रख सकदा है। कदे ना कदे सी ते जेड़ा परमार्थ दे राह ते तुरिया ही नहीं है वो पहुंच कि नहीं सकता। गली बाती तो पहुंचया नहीं जांदा। भाई गुरदास जी ने लिखे है, पूछ तो है पधक से मार्ग ना धरे पग, प्रीतम के देश कैसे बातन से जाइए। गल्ला नाल आजकल दी दुनिया गल्ला नाल ज्ञान चाहुंदी है। पर भाई महापुरुषां दा कथन है, गल्लां नाल ज्ञान नहीं मिलदा। ज्ञान ना गली ढूंढिए, कथना करड़ा सार। ए तो बड़ी करड़ी मंत्र है, औखी काटी। पर जेड़े तुर पैंदे हन ते करदे हन साईं दे मिलन दे कर्म चंगे, फिर उन्हां नूं प्राप्ति हो जांदी है। ज्ञान ना गली ढूंढिए, कथना करड़ा सार, कर्म मिले तां पाइए होर हिकमत हुकम। कर्म कर महापुरशां दी संगत करके सानू भाई चंगे कर्मां दी प्राप्ति हो जांदी। कई कहंदे जी संतां दी महापुरशां दी संगत कीतियां की मिलदा, ते बाबा जी कहंदे सन केड़ी वस्तु नहीं मिलदी। आखो श्री वाहिगुरु। महापुरुषां दी संगत करके केड़ी वस्तु नहीं मिलदी। चार पदार्थ जे को मांगे, फिर हजूर कहंदे सात जना की सेवा लगी, धर्म अर्थ काम मोक्ष। फरीद नूं भी पता लगा सी कि कोई माता है वो दस देंदी है, अज रब तुठा है अज रब रुस गया है, चलो मना उस माता कोल चलिए। मैं रब नूं मनाउण वास्ते रब नूं रिझाउण वास्ते कई कर्म कीते हन, पर अजे ज़ियारत नहीं होई कि ओ सिंगार मिलन के ताईं।

तन जियो तह को जग में, तन जियो तह को जग में, मुक्त हर चित्त में युद्ध विचार। देह अन

शरीर त्याग कर इधर गल उल्टी है। अपने पुत्रां नूं आप भेज रहे, वेखो कोई पैसे का नहीं मसला, कोई औरत का नहीं, जमीना का नहीं, एक जुलम नूं जड़ तों खेड़। एक एक कला कला हिंदुस्तान नहीं, कलगियां वाले देना नहीं, जुलम नूं उखेड़न लई साहबजादियां दा खून। ये साहबजादा अजीत सिंह सतसंग जी नाल होर सिंघां दा जत्था लिया पंजां दा, ते फिर निकले ने चमकौर की गड़ी चों लखां दा घेरा। साखी च लिखा जिहड़ा छब्बा सी ना तीरां दा, वो जदों मुक गया तीर चलाई जा रहे, कईयां नूं उन्हां ने मौत दे घाट उतारिया। हुण जदों तीर मुक गए ते कहिंदे फिर अपनी तीन फुट वाली सिरी साहब कट ली, हुण हथों थी। कुछ चिर मुकाबले तो बाद कलगियां लग तो प्यो आप वेख रहे हैं बच्चे का। कुछ चिर बाद कहिंदे वो जिहड़ी तीन फुट की सिरी साहब उहदे भी दो टुटे हो, ते कहिंदे साहबजादा अजीत सिंह ने हुण म्यान कट ली, खाली म्यान ही लक्कड़ थक सतनाम उहदे नाल ही कईयां दे सिर फुंडे। फिर आखिर शहीदी प्राप्त की। हुण उसे गड़ी विच छोटा वीर साहबजादा जुझार सिंह वो की कहिंदा, पिता जी हुण मैनू भेजो, तू कर लेगा मुकाबला। अल्लाह यार योगी खान ने उस समय में इंज लिखे है जी, ध्यान रखना,

అకాల మూర్త అయోని సంగర్ ప్రసాద్ యత్ ఆత్ సత్ యుగాత్ సత్ హేవి సత్ నాని కోశీ సత్ చక్రికేణి అర్వర్ణజాత్ అర్పాత్ నిహిన్యేన్ రూపరంగరీక్రీప్ ఊకారస్తత్తః अचल मूर्तन भव प्रकाश अमित इंद्रेन्द्राम शाहु शाहन गणिज फिर भवन में ही सुरनारासुर नीत नीत मंडन कह तब सर्वनाम कथे कवन कर्म नाम वर्ण समत सत्पुरे आयु शरण तुहारी मिले सुख नाम हर शोभा चिंता लाए हमारी और न सूझे दूजी ठार आर प्रयु तो द्वारी लेखा छोड़िया लेखा छूट है हम निर्गुण ले हो वारी सर्वक्षण सदा मेरवाना सब नामी आवारी नानक दास संत पाछा प्रयु राख लियु ए बारी सतगुर हुई दयाल का श्रद्धा पूरी सतगुर हुई दयाल ना कम हो चूरिया सतगुर हुई दयाल का दुख न जानिया सतगुर हुई दयाल का हर रंग माणिया सतगुर हुई दयाल का जमका डर के सतगुरु हुई दयाल ता सद ही सुख दयाल सतगुरु हुई दयाल ता नवनिध पाइया

अपने परत करें प्रतपाला अदरा तेरी हड़ियाई नित नानक नाम तिहाई अदरा तेरी हड़ियाई नित नानक नाम तिहाई। वाहे जी का हरदा।

जब लवनी आग मिलार उठे तब लव भरम पे फिरते बहुत आयो कल खोर समुद्र में मूड दुखे कब हूं मिट है नीरे पछतायो सत विचार यह मथुरा जगतार्न को अवतार बनायो जप्यो जिन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ अनगुरु नानक पातशाह अनगुरु अर्जुन देव पातशाह जी का पवित्र पावन नाम रसना से लिया है और नेड़े कोई संकट भी आएगा तो 84 लाख जून तू बच जाएगा तो प्यार न सारे आपको अनगुरु अर्जुन देव गंगा जी असी गुरु की संगत के सेवादार पातशाह हुक्म करो हजूर कह लगे गंगा जी फिर कड़ा प्रसाद ही देख पिया पर कड़ा प्रसाद ही देख उस आटे ने ही बनाए अब गुरु की संगत की सेवा करनी है अपने हथी पहला चक्की पी दैनी गुणा वाली मां जगत माता माता गंगा जी अज गुरु जी और संतान वास्ते आप चक्की थी आटा तैयार किया फिर साहबा ने अपने हथी कड़ा प्रसाद की अमृत देख तैयार सोने थाल विच पाई उत्ते चिट्टा रुमाल पाया माता गंगा जी कह लगे पातशाह किसी सिख नूं बुलाइए हजूर कह लगे नहीं गंगा जी असी आप ही अपने सिर पे तो संजय पातशाह जी कड़ा प्रसाद जी दे अपने पवित्र पावन शीश से रख चादर भी हुक्म मारी तुरन लगे माता गंगा जी कह लगे पातशाह मैनू की हुक्म है हजूर कह लगे गंगा जी जे संतान की सेवा करनी तुम भी ठंडे जल की गागर पर जिते संगत को भुख लगी उसे प्यास तो मात गंगा जी ने सिर के उत्ते गागर जल की रख ली हजूर तुरन लगे कह लगे गंगा जी पखा भी ना लै लो गर्मी बड़ी तुरिया जाए अज पंजवें गुरु नानक सुरती नाम सारे करो दर्शन से प्यार नाल की रखो धन गुरु रात दस गुरु को यह जाना है सिखा ने दर्शन करो नदी तो रोज तुरती है समुद्र को मिलने वास्ते पर समुद्र कदे नहीं मिलता समुद्र कदे नहीं आता पर तक लो प्यारी चार सिंह नदी रूप सिखी जे गुरु के दर्शनों तुर पैंदी है जे कोई रुकावट पै जाती है तो गुरु आप ना उतर अद्धी रात गंगा जी सुना ना मेरी सिखा के प्यार वाली आवाज भावें उन्होंने प्रशादा नहीं दे ठंडा जल किसी ने नहीं पिलाया पर फिर भी गुरु की संगत प्यार किस तरह अरदास कर गंगा जी सुनो साहबा ने बख्शिश की थी माता गंगा जी कन्ना में प्यार की आवाज आ रही है फेरी सारी संगत रात का समय प्यार इजरी है ते अरदास कर रही है मेरा

teman dia. Jadi tak percaya saya. Jodoh ada, tak apa pun dia. Jadi Pau Kutini Sahib Ji, kaya lagi Ganga Ji, Ji bahas ya, usia tak mehlan ujau. Sahib Ji, aap bhi chalo, kaya lagi chodi di sewa baki rehi hai, oh bhi kan. So, Anugurwar Jindhe bahas ya, Sangat Vichu, nagde, jathedar de kona ke kona ke. Piyar naal kaya jathedar ji, Guru kiya sakta ne jodhiya waaste sewa da di lode na da tak. कम और गुरु के सिखा एक ही वचन की तेन जोड़िया ना सेवादार बिठाए नहीं नहीं तू अगे बड़ी सेवा की रात रात शादी देख चुका है ठंडा जन पिलाए फिर सारी रात पक्का करता रहे तू तो कोई धर्म अर्जुन देव पातशाह जी का पूर्व सिख है प्यारे तेन इतने नहीं बिठाना तेनू नाल लेके चलांगे ते गुरु की अरदास करांगे पातशाह पहले मेरी तेरे दर्शन करने वास्ते आया और कुछ नहीं मंगदे जो कुछ सिख नूं दित्ता जे साडी चुनी तेरे सबके तो साडे गुनाह बख्शे जाने कह लगी जथेदार जी मैनू इतने मजबूर किया और तेरी सास ने जी सारी संगत ने जोड़े उतार दिते संगत तो हरिमंदर साहब जा रही है तो जोड़िया का राखा कौन बैठा है प्यार ने आखो पहले संगत अंदर पहुंच साहब श्री मुकुंद साहब जी के दर्शन होए पर पंजे पातशाह के दर्शन बाबे बुढ़े ने पूछा बाबा जी पंजे पातशाह कितने हम दर्शन करिए आपे ने किया सा संग जी पंजे पातशाह का रात दे पितली साहब गए श्री अमृतसर गुरुद्वारा श्री साहब जी ने सुखी से पुतली घर के कोल गुरुद्वारा स्थान यह इतिहासक जो साखी पुतली साहब पुतली घर के नाल पितली साहब गुरुद्वारा संगत ने किया बाबा जी पिपली साहब असी रात पिपली साहब रहे सानू तो गुरु के दर्शन नहीं हो क्योंकि संगत पहले ही दर्शन करवाते गुरु की सौ सुन के दर्शन बाबे बुढ़े ने कह नहीं राती श्री हरिमंदर साहब बहुत पे आ ग्यारह का टाइम साहब जी ने कहा सी बाबे यार गुरु दिया संगता दूरों तर के आईया हर कुछ मिला तो उतारा किया है गुरु की संगत को की देते मैं क्या सिर पातशाह हुक्म करो जाके लंगर छका दे पर पंजे पातशाह मने नहीं कह लगे बाबिया तू तो रोज गुरु की संगता की सेवा करना है अजे ला सन दे रात इतनी सब एक दूजे के मुंह वाले खुल लगे जथेदार ने किया बाबा जी पंजे पातशाह तो नहीं गए सिख जरूर गया हूं एक प्रचार भी छकाया जल भी पिलाया प्रसाद भी करता रहे बाबा बुढ़ा जी कह लगे प्यारे हो सिख नहीं सी सिखा का मालिक बाबा जी किस तरह हो सकता है तो बाबे ने किया पता हूं से कितने बड़े निराश एक दूजे के मुंह वाल तक के ते उदासी भी जाके कह लगे बाबिया हूं तो जोड़िया का राखा बिठा गया बाबे बुढ़े दिया पुपारी प्यारी साध संगत पंजे गुरु नानक जोड़िया का राखा बिठा बाबा बुढ़ा जी भजे जी मगर संगत भी भजी जाए पहुंच गए इधर मेरे पंजे पातशाह की कर रहे हैं एक जोड़ा चुक लेते हैं वह साफ कर लेते हैं तो भी धूल मथे दे जाते किसी अगम्भी खेड़े के नाल पढ़ते हैं